0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: लैंगिक हिंसा कुनै परिवारको निजी विषय होइन, यो मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। यसका लागि नेपालमा थुप्रै कानूनहरू बनेका छन्।
2: घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066 पीड़कलाई 3,000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना र 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
1: सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा गरेको पाइएमा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार पीड़कलाई 3,00,000 सम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
2: मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 पनि पीड़कलाई 2,00,000 जरिवाना वा 20 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
1: घरेलु हिंसा कसुर र सजाय नियमावली 2067 अझ पीड़कलाई घर बाहिर राखेर पीड़ितलाई संरचनात्मक आदेश दिन सक्ने प्रावधान समेत उल्लेख गरिएको छ।
3: त्यसैले हिंसा रोकौं, सम्मान समानता र न्यायुक्त समाज निर्माण गरौं।
2: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

0: गरेको भए होइन, गरिहाल्नुहोस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह अपना भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली, फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: काहुल बाबू अपने कलकलाइत रही अपना काकर कलकलाइत रही ले भुइया में के हो काकर भुइया में ढनवा नाल बाटी
1: सुनिए ना दादू हमरा दुनू जना बना में घास काटा रहल है मर संग भी सब पका दो नी ना दादू हाल क्या करना होई एही ना सत्य हो पता के नो पुगा कोले से मिले रहा
0: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठे नी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नी आते हैं ना संघरिया ध्यान दी हेलो मुकेश तू जत्ते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाऊ यहाँ एक जना बाबू है ना सपुआ काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाऊ पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जत्ते ही आओ हाँ सबकू काम छोड़ खा
2: बैठा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू जत्ते ही
0: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जतरा साइकिल जत्ते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी बेला में सबसे जत्ते हुई ना यातायात के साधन वाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुराई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भर पर ना संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच ऐसी बैठा कर ना उपचार केंद्र पुगा डार हूँ अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
1: लगा
3: दे करी 7-10 से मोटरसाइकिल स्वयं से डी बलाये सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
4: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मन बचाई सक दी था वो इन्हीं में से हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सांप डसलक मन न छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले ऊ मन एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई थप पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज

0: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
1: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो, देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
0: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
0: अब त म ढुक्क।
2: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
1: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फैन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाऊँ।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477417।

0: फुका पिएर कभी पेन्सिल कबू झलै फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गटिलो ठाउँसे झोला आनलसे त लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेन्सिल हेरा कई ठो कबू झोलै फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: तो कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेन्सिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको पहिलो दोस्रो र तेस्रो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 20 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहानी 9 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने स्वागत बा। खोज खबर से मैं सीता चौधरी के राम राम। अपने सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोहलाब सम्रपात्र और नेपाली पात्र मफी सुन्टी रहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से गर्मीमा विद्युत अनियमित हुलक नागरिक हैरानी आपूर्ति सुधार लन्ना तार बदलना सब स्टेशन मरमत के कार्यकर्ती रहल वितरण केन्द्र प्रमुख के कहाई। मनसून सक्रिय नै हुलक पश्चिम नेपालमा गर्मी बहर्ती सोमबार से पश्चिम नेपालमा फेरि मनसूनी वर्षा भइसक्ना मौसमविद के कहाई। धनगढ़ी और टीकापुर मस्से लागू औसत सहित 6 जना प्रहरी के नियन्त्रणमा। ओ कोलम्बिया और पोर्चुगल संघ कंगो फे विश्वकप के नकआउट चरण में। गर्मी अत्यधिक बढ़ावा गर्मी के मन के जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ हे गर्मी के बेला बिजुली अनियमित हुलक नागरिक थाव समस्या हुना कलवा नेपाल विद्युत वितरण केन्द्र टीकापुर विद्युत आपूर्तिमा सुधार लन्ना ओ जोखिम न्यूनीकरण करना मरमत तार बदलना लगायत के कार्य हुटी रहल जनेलवा। अब कुछ दिन में विद्युत अनियमित हुना टीकापुर वितरण केन्द्र के प्रमुख आनन्द सापकोटा बटुलबाट। हाल कोशी मधेसो बागमती प्रदेश के सक्कू क्षेत्र गण्डकी प्रदेश के कुश तथा लुम्बिनी प्रदेश के पूर्वी भेके कुछ ठाव में मनसूनी वायु के प्रभाव प्रहलवा। जल तथा मौसम पूर्व अनुमान महाशाखा के अनुसार बाकी अन्य क्षेत्र में पश्चिमी तथा स्थानीय वायु के आंशिक प्रभाव प्रहलवा। गण्डकी और लुम्बिनी प्रदेश के बाकी भेक तथा कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के सक्कू क्षेत्र में आगामी 1-2 दिन भीतर मनसून विस्तार होने संभावना रलक महाशाखा जनेलवा। हाल देश की हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्र में साधारणतया बदली लग्ला से फिर तराई क्षेत्र में आंशिक बदली लग्नावा। तर कोशी बागमती और गण्डकी प्रदेश के 1-2 ठाव में मेघगर्जन तथा चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुई हल्वा। अस्तक कर्के आसराती कोशी मधेश बागमती और गण्डकी प्रदेश में साधारणतया बदली लग्ना तथा लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश में आंशिक बदली लग्ना पूर्वानुमान बा। कोशी बागमती और गण्डकी प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्र के कुश तथा लुम्बिनी को कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भेग के कुश ठाउँमा मेघगर्जन तथा चट्याङ सहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात के सम्भावना बा। संग महाशाखा के कोशी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई 1-2 ठाउँमा भारी वर्षा हुईसेकना हुलको मस्से हुईसेकना जोखिम प्रति सतर्क रहना महाशाखा आग्रह करलबा। महाशाखा के अनुसार लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई के कुछ ठाव में तातुल हावा चलना संभावना रलक आवश्यक सतर्कता अपने आग्रह करलबा। लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई के अधिकांश ठाव में शुक्रवार शनिवार 40 डिग्री आसपास तापक्रम मापन हुईलक नागरिकों समस्या हुई रहलबा। आज से फिर तापक्रम कुछ घटके जैना मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनेलवा। देश के अन्य प्रदेश में वर्षा हुईले से फिर सुदूरपश्चिम और लुम्बिनी प्रदेश में आज समे गर्मी रहना कार से पानी आईसेकना संभावना लग मौसमविद संजीव अधिकारी जानकारी दिलवाट। खुश खबर में घरिक विश्राम विश्राम पाछ फिर से बीच सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: चुरे जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौं हरियाली बढ़ाऊ चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलाली द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरेसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ब्याग, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: विश्राम पाछ फ्रेसे स्वागतबा। कैलाली के धनगढ़ी टीकापुरमस्ते प्रहरी लागू असत सहित छह जना हो नियन्त्रणमा लिएलबा। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका तीन त्रिनगर ब्यारेकमस्ते अवैध लागू औषध खैरो हिरोइन 1 ग्राम 270 मिलीग्राम सहित कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिका 6 बैठना 21 वर्षीय किरण भट्ट शनिबार दिनकै प्रहरी पक्राउ गर्नबा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमस्ते खटलक प्रहरी चेक जाँच कलक उक्त पदार्थ फेला पर्के भट्ट पक्राउ कलक जनैलबा। ओस्तंकरकै टीकापुर नगरपालिका 9 खकरालमस्ते अवैध लागू औषध खैरो हिरोइन 1 ग्राम 270 मिलीग्राम सहित बर्दिया के राजापुर नगरपालिका 6 बैठना 23 वर्षीय परमेश थारू शनिबार संध्या के प्रहरी पक्राउ कलबा। प्रहरी के चौकी कालाकुण्डा कैलाली मसे खटलक प्रहरी उक्त पदार्थ फेला सहित पक्राउ कलबा। अशंकर के टीकापुर नगरपालिका 9 खैरीपुर मसे अवैध लागू औषध खैरो हिरोइन 290 मिलीग्राम सहित 2 जना शनिबार संध्या प्रहरी पक्राउ कलबा। पक्राउ पर्नामा जानकी गाउँपालिका के 3 बैठना 21 वर्षीय राहुल तिरुवा व 19 वर्षीय सुरेश खनालबाट प्रहरी चौकी शक्ति कैलाली मसे खटलक प्रहरी चेक जाँच कलक उक्त पदार्थ सहित फेला पर्के पक्राउ कलक जनैलबा। ओस्तहक टीकापुर नगरपालिका 8 खकरलमस्ते खैरो हिरोइन 1 ग्राम 930 मिलीग्राम सहित 2 जना शनिबार संध्या प्रहरी पक्राउ कलबा। पक्राउ पर्नामा ओहो नगरपालिका 1 ब्लक नम्बर 23 बैठना 23 वर्षीय प्रशान्त थापा हो। जानकी गाउँपालिका के 3 लायकपुर बैठना 24 वर्षीय अर्जुन एडी रहलबाट प्रहरी चौकी कालाकुण्डा कैलाली मस्से खटलक प्रहरी चेक जाँच कलक उक्त पदार्थ फेला पर्के दुनु जनाहा पक्राउ कलक जनैलबा। डोटीमा करेन्ट लागि एकजनाकी मृत्यु हुलबा। डोटीके बडी केदार गाउँपालिका 2 खर बैठना 50 वर्षीय हर्क बहादुर पल्ली मगर के शनिबार दिनके करेन्ट लागि मृत्यु हुल हो। मगर के ओठाउ स्थित घरके झ्याल ढोका बनेना क्रममा अचानक करेन्ट हुलक मृत्यु हुलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटी जनलबा। खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछ फेरसे विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा
5: यही असार 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन।
4: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण को उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म।
5: डाक्टर आउने दिन असार 13 गते दोस्रो शनिबार।
6: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान।
7: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
8: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमे जाइस् तो?
9: मै नै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
8: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
9: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
10: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुंजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
11: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417।
0: विश्राम पाछा फ्रेसे स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नागरिकको राज्यकी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारहरूलक सबको निकायबीच प्रभावकारी समन्वय व सहकार्य आवश्यक रहल बोटिलोबाट धनगढ़ीमा कार्यक आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीकी उद्घाटन गर्दै उहाँके नागरिकीय जीवधनकै सुरक्षा राज्यकै सुरक्षा गर्न जिम्मेवारी सरकार सुरक्षा निकाय अदालत तथा संचार क्षेत्र सबको साझा दायित्व हुलक बोटिलोबाट उहाँ जनताकै सुरक्षा केन्द्र मधरकै काम गर्न सिक्लक राज्यप्रति नागरिकीय विश्वास बहलक बोटिलोबाट अनुसन्धान प्रणाली प्रभावकारी व्यवसायको नतिजामुखी बनाइपर्नमा मुख्यमन्त्री शाह जोड़ दिल रहे। खबर फिफा विश्वकप कप अन्तर्गत समूह के अन्तिम खेलमा कोलम्बिया पोर्चुगलकै गोल रहित बराबरी खेल्ती अंक बढ्लबाट मियामी स्टेडियममा हुलक प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुनू टोली गोलके थेओर अवस्था सृजना कलसके कुनोफे टोली गोल कर नै सकल बराबरीके बावजुद दुनू टोली हिंस्याक नै अन्तिम 32 अर्थात नकआउट चरणमा स्थान सुरक्षित गर्न सकल रहे। खेलकी अन्तिम समयमा कोलम्बियाके डेभिनसन सान्चेजेले जुआन फर्नान्डो क्वेन्टेरीके पासमा हेड मार्फत गोल कर रहित तर भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री खचके सुषमा समीक्षा कल्पाछ उक्त गोल अफसाइड ठहर गर्दै रद्द गर्दै रही वकर कारण कोलम्बिया जितमसे वञ्चित हुल रह। दोस्रो हाफमा कोलम्बियाके लुइस सुआरेजले गोल गर्दै दुई उत्कृष्ट अवस्था पहिला सेफे पोर्चुगलके गोलरक्षक डिएगो कोस्टाले उत्कृष्ट बचाइदा कर्ल। यहाँ पोर्चुगलके ब्रुनो फर्नान्डेज ओ जोआओ नेभेस फेकुस अवसर सिर्जना गर्लक तर कोलम्बियाकी रक्षा पंक्ति भेदन गर्न नै सक्ल। यो बराबरीसँग पोर्चुगल समूहकै दोस्रो स्थानमा सीमित रहे, कोलम्बिया शीर्ष स्थानमा रह। यस समूहकी एउटा खेलमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो उज्बेकिस्तान 3-1 पराजित गर्दै पहिलो चो विश्वकपकै नकआउट चरणमा स्थान मिलेबाट शुरूआतमा पाछ पर्ल। कंगो दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट पुनरागमन कर्ल। फिस्टन मायेले 78 मिनटमा गोल गर्दै टोली अग्रता दिदेलसेफे इन्जुरी समयकै पहिलो मिनटमा यु आने विशा ले तेस्रो गोलकती जित सुरक्षित गर्न यी ऐतिहासिक जितसँग कंगो अन्तिम 32 मई इंग्ल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हुलबा पराजित उज्योबीकी स्थानमा फेरि प्रतियोगिता बाहिरबाट यही समाचारसँग खोज खबर वराइल जेनासे पहिले खबर के मुख्य शीर्षक फेर सेक्छ गर्मीमा विद्युत अनियमितलक नागरिक हैरानी आपूर्तिमा सुधार गर्न तार बदल्न सब स्टेशन मरमतकी कार्य कतिलक वितरण केन्द्र प्रमुखका है मनसून सक्रिय नै हुलक पश्चिम नेपालमा गर्मी भर्ती सोमबार से पश्चिम नेपालमा फेरि मनसूनी वर्षा हुइसक्न मौसम बितेका है धनगढ़ी और टीकापुर में से लागू औसत सहित 6 जना प्रहरी के नियंत्रण में कोलम्बिया व पोर्चुगल संग कंगो फे विश्वकप के नकआउट चरण में खोज खबर रह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद लिटी अबकला खोज खबर से मई सीता चौधरी बिराई टू अगर पांच 12 बजे के खोज खबर सुन सिक्वी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम
12: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेजका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ उच्च जीवन स्तर निर्माणका लागि निर्णायक क्षण यही हो
13: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू बीई कम्प्युटर बीसीए बीबीए बीई सिभिल का साथै एमबीए कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ
12: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर भेडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091-523-312 र 523-949
14: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडाको आर्थिक वर्ष 2082-83 सञ्चालन भएका विकास निर्माण सेवा प्रवाह योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति उपलब्धि लगायतको विषयमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुँदा सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सामुदायिक वनका प्रतिनिधि बुद्धिजीवी शिक्षक बड़घर स्वास्थ्य स्वयंसेवीका कर्मचारी उपभोक्ता समिति युवा सञ्जाल बाल सञ्जाल पत्रकार नागरिक समाज तथा आम ओडावासीहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 14 गते समय दिउँसो 1 बजे स्थान ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा

0: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
2: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धात धमकी अपमान गैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैसे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
1: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
2: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
1: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

0: काती रहिथ कभी पेन्सिल रहिथ कबू झलै फटाका आजिथ काकना हो काकना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झला आनला से त लड़का सामान निहेर
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई थी जलम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झला लाना नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिये रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रटगैया झोला उद्योग में रटगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
4: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-4857-1828।
5: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-42-72-59।

0: बुढल्ला सुन्छौ कि नै वानन्दे ग्वाज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अनि गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशानाटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा सरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिके बा चल हाली भात वात खाइ औ जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स मे गर गहना बनाइ सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटाका आज इठा का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिप ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रथ गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर में
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-42-73-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
4: डेलिभरी का लागि
6: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
4: टीकापुर कैलाली
3: संपर्क मोबाइल नंबर 9807106772
7: स्वास्थ्य का लागि पानी

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाग्छ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू अछाम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98246025। अछाम मंगलसैनका लागि रूप सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98246628225।
3: बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उन्हें पट्टा नि पैना त
4: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटू कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
3: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दीदी ये नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना का आंसे के कतरा सुगर बना कर लबाटी
4: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
3: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684141208 और 98486 39261।

0: उही सबै पेपर अर्को सकिया हो
1: सकियो
0: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरि
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकमको अफिस ड्राइभर ब्लक गरि आयौ
0: उही बैंकमी
1: बैंकमी
0: त्यही
1: अद्दु पढ्यो
0: त्यो त अद्दु पढन्छ भ आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई जानकारी दिनु पढन्छ र आफ्नो बैंक खाताको जानकारी औरका हातमी पुग्दो बठे सचेत बनौ
1: सतर्क रहौ ठगी बठ्याई बचौ
2: सिद्धार्थ बैंक बठ्याई जनहितमी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: अपने चल गए कुछ कराइल वो सबको साथ बिखा थे
5: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी हिन्ना दाई
6: लिया नेपाल में पाजिना बिखा सापन के विषय में सुन एक गरैचा जोन खास कैख रातिक समय में घर भीतर बैठ सेक्ठ ई कटला से निबाई फे सकत तर कटलक पाछ डे भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना में से लक्वा हुई सेक्ठ और रठ डोम जोन बड़ा रिसाह मेरी रठ निकर फाट फुले डोम साप दिन वा रात दुनू में देख पड़ना ओ खास कैख संजा बिहान देख पर्स निकर कटला से फे लक्वा हुई सेक्ठ ओ और रठ कैली जाटक साप निकर कटला कला से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बठे था रगत फिर पाती होकर रगत बहना हुई से था उसने कहा हमार देशक तराई सबको भूभाग में पा देना बगो अपने न फुनकार ना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम केल पा दे था तर हिकम न कटाई एकदम खतरनाक रहा
7: बर्खा छा को अनाज बिक्री न समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना धीर मिला कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप के कारण सापन का बछारा नाश हुए सापन का दसाई का घटना धीर मिला कर लग पा जाए
8: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वो फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै था
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के वस्त्र बाटिन गटीलो ठाउँ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनंद झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकटी
1: लिया लिया मैं अभी ही जाबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ,
0: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झोलै फटाका आजि ठ काकना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला अनले से त लड़का सामान निहेरे
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई थिस जरम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटाका ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक ठ
1: अरे कहाँ से नानम
0: ठ कहाँ से लनबो ओ त का हो टीकापुर म रलक रगे या झोला उडोक म से वहा झिंगरान दिदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबु लड़का का पिएरी थिन ना कबु पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहियक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छानकन झोला नि आन स्याक ठुही
1: लिया मैं अब भी जेबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: आई गई क्या आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाईकन आएकी होली मेरी चेली
4: तनखा खाईकन होइन बुवा तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु हो भन्या बुवा पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु सिटिजन लाइफ नि त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन् भाइका लागि बाल भविष्य योजना तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना वाँचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे
3: ठिक गरिबा आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ
4: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त होइन त बुवा सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हितो छ झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-2179 सम्पर्क हरे

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालू खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: ए सन्तेकी आमा, पर कान्छा खालाको बिहाको न्युत आएको छ, कसो हो त? जाने विचार छ कि नै त?
1: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगरिकन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र बन भाँची गयो।
0: यतिकै लागि त सामुएल ज्वेलर्स बनेको, बरु अहिले जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
1: आज त सन्तेका बाले मनकै कुरो हर्यो, छोट त बाई जाउँ।
2: सामुएल ज्वेलर्स सुनचादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9864412008, 9846239261।
3: अङ्गमा ल्यान
4: पुग्दैछ हाम्रो सहयोग कैखल एन्टिबाटी बिहान मोटरसाइकल घुमाएको धर्ने गरिना
3: बैठा बैठा रम्यान रसरस मर्पा छ बैठाई को एकजना ब्रह्म्यान पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाईवीर ब्रह्म्या बेहोश हुई से नापुला को से पास से पकड़ का बैठा पड़ता का
5: ब्रह्म्यान अगर हुई न कई कमई पकड़ का बैठा टू सुनील जी अपना देशी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पडंशक ब्रह्म्यान उपचार केन्द्र लैजना सजिलो हुई बा
3: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतला ठाउँबाट मै असक मोटरसाइकल स्वयंसेवक उपलब्धबाट सजिलासे हो झट्ट पाजिलासे ब्रह्म्यान।

0: सामुदायिक रेडियो टीका पुरफ्यूम के संजीक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी को स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल सम्रह पात्र ओ नेपाली पात्र में सुन्टी घलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से स्वास्थ्यकर्मी विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी 2 दिन अभिमुखीकरण अतिरिक्त होटल मस्ते 2 किलो सिद्धिर बढ़ी चरे सहित 2 जना पकड़ाऊ प्रतिनिधि सभा मस्या आर्थिक विधेयक राष्ट्र ऋण उठेना विधेयक पारित ओ फिफा विश्वकप 2026 अपराजित अर्जेन्टिना नकआउट चरण में स्वास्थ्यकर्मी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी 2 दिन अभिमुखीकरण करगिलवा टीकापुर नगरपालिकाकै आयोजना महिलक छलफल में पालिका कृषकको स्वास्थ्य संस्थाकै कर्मचारी सहभागी रहे तालिम विपद तथा महामारी के समस्या बिरुवाको व्यवस्थापन उपचार समयमा कसरी गर्नका कि जोखिम मूल्यांकन सरमा सिस्टम प्रयोगबारे जानकारी दिलबाट कार्यक्रममा विपदमा कसरी व्यवस्थापनमा सघेना महामारी देखरेख अध्ययन अनुसन्धान गर्न समयमा उपचार सेवा कसरी दिन शिविर सञ्चालन कसरी गर्न बारेमा सिकाई भुलक स्वास्थ्यकर्मी नवराज रेग्मी बुटिलोबाट स्वास्थ्यकर्मी मिलन विष्ट विपद व्यवस्थापनकी कार्यकर्तीहरूले सफेद कहिया गर्न कसरी गर्न जोखिम हुलक कहाँ खबर गर्न लगायतकी बाद जानकारी हुलक बुटिलोबाट स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावल स्वास्थ्यकर्मी तालिम धेल्पाछ विपद समयमा स्वास्थ्य संस्था मस्य दिना सेवा प्रभावकारी बनिन सकेन रोग फैलन नै दिन कसरी काम गर्न पालिका रलग दूत प्रति कार्य समिति और दूत प्रति कार्य टीम परिचालन में सहयोग सहक्रियता भर्ना बोटिलोट स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीकी विपद सम्पर्क व्यक्ति विमला गेवाली मानव स्वास्थ्य व वातावरण में विपद प्रभाव पर्ना हुए कि समय में स्वास्थ्यकर्मी भूमिका महत्वपूर्ण होना बोटिलोट महा विपद के समय में फैलाइन सकना मिथ्या सूचना मस्य स्वास्थ्यकर्मी जगपना स्वास्थ्य सेवा पहिलो प्राथमिकता देहपना पाठ कोविड के समय में फिर शिक्षक विपद व्यवस्थापन गलत सूचना के भ्रम से बचना आवश्यक रहल बोटिलोट कार्यक्रम सहजीकरण स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र के डाक्टर सुजन अधिकारी स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीकी विमला गेवाली टीकापुर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावल वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी लगायत सहजीकरण कर्ल रहे कैलालीकी अतरिया स्थित एक होटल में प्रहरी छापा मारके 2 किलो सिद्धिर बढ़ी चरे सहित 2 जना पकड़ाउ कलबा गोदावरी नगरपालिका एक अत्यारेमा रलक ममता सिकुआ सेन्डरमा लागू औषधकै कारोबार हुटिरहल गोप्य सूचनाकै आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेती व लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो महेन्द्रनगरकै संयुक्त टोली आइतबार दिनकै करिब 1:30 बजे छापा मारलबा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीकै प्रवक्ता प्रहरी नायक परीक्षक युगन्द्र तिमी सेनाकै अनुसार पक्राउ पर्नामा डडेलधुराकै भागेश्वर गाउँपालिका 3 कै 45 वर्षीय शंकर कुमार शाही ओ कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिका 4 कै 52 वर्षीय मिनराज भट्ट रहलबाट शाही हाल गोदावरी क्षेत्र मरलाग भट्ट धनगढ़ीमा डेरा कर्के बटिएले रहे उहाँके प्रहरी उहाँ हुकनके सँग 2 किलो 205 ग्राम चरेस बरामद कलक जनिलबा पक्राउ पर्नमा दुनू जना नियन्त्रणमा धर्के लागू औषध सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भुटिरहल प्रहरी जानकारी दिलबा कैलालीकी लम्कीचुहा नगरपालिका एक राजीपुरमा एकजना पुरूष अचेत अवस्थामा फेला पर्लबाट हालसम्म उहाँकै पहिचान खुल्न नसकेलक प्रहरी जनैलबा इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीकी अनुसार अचेत अवस्थामा फेला पर्लक उहाँकै पुरूषमा उद्धार कर्के लाल रत्न अस्पतालमा उपचार हुटिरहबा उहाँ हाल बल सेक्ना अवस्थामा नैरलक परिचय खुल्न नसकेलक प्रहरी जनैलबा प्रहरीकी उक्त व्यक्ति चिन्ह वा उहाँकी आफन्तबारे जानकारी होइना उहाँ तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा सम्पर्क गर्न अनुरोध कर्लबा थप जानकारी लाग इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीके 091-54-0199 नम्बरमा सम्पर्क गर सिक्ना प्रहरी जनिलबा खोज खबरमा एकरी विश्राम पाछा फेरसेवी सुन्तिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ
1: फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
2: हो र
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
2: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
2: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
2: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ,
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ECG सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 98484 27359 र 98442 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
5: आइ हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल।
6: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु, मिल्बो मिल्बो नि करत
5: घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो न कबू कौर घुम जाए था पाए।
7: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98484 43 26।
0: प्रतिनिधि सभा की आज बैठक बजेट संघ सम्बन्धित आर्थिक विधेयक 2083 बहुमतो, राष्ट्र ऋण उठेना विधेयक 2083 सर्वसम्मत पारित कलवा। सभामा अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगले प्रस्तुत कलक आर्थिक विधेयक 2083 हो, राष्ट्र ऋण उठेना विधेयक 2083 सभामसे पारित हुलक। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल घोषणा कल रहे आर्थिक विधेयक 2083 के ऊपर 60 संशोधन के सूचना प्राप्त हुई रहे। राष्ट्र ऋण उठेना विधेयक के ऊपर 3 ठो संशोधन के सूचना प्राप्त हुई रह, दुनू विधेयक के ऊपर पलक संशोधन हुक्र मध्य अर्थमन्त्री डाक्टर वागले स्वीकार कलक प्रस्ताव बाहेक संशोधन कर्ता सांसद हुक्र फिटा नैले खुलक अन्य प्रस्ताव हुक्र सभाकी बहुमत अस्वीकृत कल रही। आर्थिक विधेयक के ऊपर छलफलमा उठलक विषयमा जवाब दिति अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगले बजेट मार्फत ऐतिहासिक रूपमा कर सुधारके प्रस्ताव कलक बोटिलोबाट। अर्थमन्त्री डाक्टर वागले सरकारके प्रस्ताव कलक निजी विद्यालयके शुल्कमा 3% लग्ना कर गरी तथा निम्न आय हुलक नागरिक लक्षित नै हो कि सार्वजनिक शिक्षा हो स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बन्ने अलग बोटिलोबाट। अर्थमन्त्री डाक्टर वागले चालू आर्थिक वर्षमा 35% पूँजीगत खर्च नै हुलक, कति पूँजीगत खर्च कम हुना वर्तमान अवस्थामा आगामी वर्षमा से सुधार हुना हो नतिजा देख्न करके बजेट ऐलक बोटिलोबाट। सांसद हुक्र विधेयक टेरोसिन शीर्षकमा कर लिना व्यवस्था कलसेफी आयकर छुटलक सम्बन्धमा स्पष्ट पारपर्ना करके दायरा सरल निजी क्षेत्रके व्यवसायी बुझ सेक्ना हुईपर्ना बोटिलोबाट। पूँजीगत खर्च न्यून विनियोजन करके चालू खर्च विधि कलक मुलुक के विकास प्रयास प्रभावित हुना शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गर्ना करके दर हेरफेर वैज्ञानिकको व्यवस्थित बनाइपनामा जोड दिलबाट। राष्ट्र ऋण उठिना विधेयक के पर्दफा वार छलफलमा उठलक विषयमा अर्थमन्त्री डाक्टर वाकले विदेशी ऋण निश्चित आयोजना हो पूर्वाधार विकासका लागि नै ऐना वा महनै केन्द्रित रहलक बोटिलोबाट। उपराष्ट्रपति राम साहे प्रसाद यादव शिक्षा अनुसन्धान नवप्रवर्तन डिजिटल प्रविधि संघ जोड़पन्नामा जोड़ दिलाबाट मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजके रजत महोत्सवके अवसरमा आज यहाँकी आयोजित समारोहमा उहाँकी कृत्रिम बौद्धिकता वा आधुनिक प्रविधि विद्यालय से विश्व विद्यालय समकै शिक्षा संघ जोड़पन्ना होटेलबाट शिक्षा क्षेत्रमा नवप्रवर्तनकै कमीहरूलाई उल्लेख गर्दै उहाँ डिजिटल शिक्षा मार्फत उहाँकै परिपूर्ति करपनामा जोड़ दिलबाट शिक्षा अनुशासन अनुसन्धान नवप्रवर्तन संघ जोड़की आग बढ़पना उहाँकै कहाइरह शिक्षाकै विनम्रता अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्वकै भावना विकास गर्न बहुजातीय मुलुकमा शिक्षा नै सद्भावकै आधार हो। राष्ट्र निर्माणमा शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान दिन शिक्षाको पर्ना भविष्य निर्माणका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक भएकै युवा स्वरोजगारतर्फ उन्मुख बनेर शिक्षा सहयोग गर पर्ना प्रमाणपत्र प्राप्तिमा केही सीमित नै हो कि गुणस्तरीय शिक्षामा जोड़ दिए पर्ना शिक्षक राष्ट्र निर्माणकै अभियन्ता हो कि विश्वविद्यालयकै अनुसन्धानकै केन्द्रमा रूपमा विकास गर पर्ना उपराष्ट्रपति यादव कल रही कलेजकी व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर पाण्डे सहजो सुलभ रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आफ्नो अभियान मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजकी निरन्तरता दिलक बुटिलोबाट कलेज आगामी दिनमा अभिन उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाकै रूपमा विकास गर्न उहाँ प्रतिबद्धता रहे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपकुलपति दीपक अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा से सम्बन्ध प्राप्त गरीब 450 सामुदायिक क्याम्पस मध्ये मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजकै स्थान उच्च 10 उत्कृष्ट शैक्षिक प्रतिष्ठानमा रहल बोटिलोबाट क्याम्पस प्रमुख बाबुराम अधिकारी कलेज स्थापनाकालसे हालसम्म गतिविधिबारे जानकारी दिलबाट खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछा फेरि सुन्त्रेवी सामुदायिक रेडियो टीका एफएम।
8: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरोसाइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
9: यही असार 20 गते तेस्रो शनिबारको दिन
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
8: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
10: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
9: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार।
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72।
12: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
13: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा। अब खेल खबर। साबिक विजेता अर्जेन्टिना फिफा विश्वकप 2026 के समूह चरमा 100% जीत निकटी नकआउट चरममा प्रवेश गर्नुभयो। डालस स्टेडियम आइतबार बिहानकै समूह जे के अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिना जोड़ 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै 9 अङ्क सहित समूह विजेताकै रूपमा अन्तिम 16 स्थान सुरक्षित गर्नुभयो। अर्जेन्टिनाकी जीतमा जियोभानी लो सेल्सो, लाउटारो मर्टिनेज, कप्तान लियोनल मेस्सी 1-1 गोल गर्ला। जोर्डन केलाक मुस्सा अल तमारी सान्तना गोल लौटेला। खेलकी 19 मिनटमा लो सेन्सो फिल्किक मार्फत सुन्दर गोल गर्दै अर्जेन्टिना अग्रता दिलेर 31 मिनटमा मटिनेज लेफ्ट पेनाल्टी हाँ गोलमा परिणत गर्दै टोलीकी अग्रता 2-0 बनेला। दोस्रो हाफके 55 मिनटमा अल तमारी गोल गर्दै जोर्डन हा खेलमा लौट्न प्रयास कला तर दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश कलक कप्तान मेसी 80 मिनटमा गोल गर्दै अर्जेन्टिना जित सुनिश्चित कला। इन्सियागो अर्जेन्टिना पहिलो खेलमा अल्जेरिया हाँ 3-0 तथा दोस्रो खेलमा अस्ट्रिया हाँ 2-0 ले पराजित कलर है। समूह जेमा अर्जेन्टिना 3 खेलमा से 9 अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा हासिल कर समान 1-1 अंक अलग समान 4-4 अंक अलग अल्जेरिया व अस्ट्रिया क्रमश दोस्रो तेस्रो स्थानमा हटेकी नकआउट चरणमा पुग्ला। जोर्डन फेरि 3 खेलमा पराजित छुटी अंक विहीन रहल। यी समाचार संखोज खबर वराल जनासे पहिले खबर के मुख्य शीर्षक फेर सेटो स्वास्थ्य कर्मी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी 2 दिने अभिमुखीकरण अतिरिक्त होटल मस्ती 2 किलो से ढेर बढ़ी चरे सहित 2 जना पकड़ाओ प्रतिनिधि सभा मस्ती आर्थिक विधेयक को राष्ट्र ऋण उठेना विधेयक पारित ओफिफा विश्वकप 2026 अपराजित अर्जेन्टिना नकआउट चरणमा लीता बक्ला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र रत्नापुर मग्रह धन्यवाद दिखी अब बक्ला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई रू एक पास 6 बजे की खोज खबर सुन सीखी सामुदायिक रेडियो टीका प्रोफम सुनती रवि राम राम।
14: ओहट हेर बुढ़िया बरखक समय खेबा बखारिक मुहक रुकल बाकी मुसवा आयल कला से आब मुसवा खुशी सपोफे आई सकता।
15: ओहो हो निका ठाक समझनो घरक अंदर पास झफास से बाहर से कच्चा का पहिल बा काट पर ना रह।
14: हाँ असी करी हेर बुढ़िया वो सिन्हो कला से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका कर बासी खाई दूसरा सर परिवार मने मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर दी तनी भी
15: मीठा हो बुढ़वा असी जाला मदर ध्यान घास फोहर झफास भी था उमा साफ नुख का बैठल रह सकता ना
14: वह और से तक रखो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर घर आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर थे सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना मेरकर चबरदार दूसरा घर आंजर पांजर फसफार वो सफा हुई से सांप ऐना का उत्साह कम हो जाए
15: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
16: सांप बरखा छागक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
17: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई सकता
18: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकती था।
19: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
20: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेजका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। उच्च जीवन स्तर निर्माणका लागि निर्णायक क्षण यही हो।
21: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू BE कम्प्युटर BCA BBA BE सिभिल का साथै MBA कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
20: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर बेहडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091-523-312 र 523-949।
22: ए बा आइगई क्या आज त पहिला नौकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
23: तनखा खाइकन होइन बुवा
1: तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु हो भन्या बुवा पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन् भाइका लागि बाल भविष्य योजना तमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना वाची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन तसाईले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे
22: ठिक गरिबा आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ
1: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त होइन बुवा सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हरे
2: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: ई लड़का के कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटा का आज था, कहा का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कापी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान के ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेज का तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। उच्च जीवन स्तर निर्माण का लागि निर्णायक क्षण यही हो।
4: विगत 27 वर्ष देखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू BE कम्प्युटर BCA BBA BE सिभिल का साथै MBA कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइसक्न हुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
3: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर भेडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091-523-312 र 523-949।
5: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
6: कोट पीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
5: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
6: अठुआ पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
5: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
7: जीजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
8: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान गैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नाई लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

भ्रष्टाचार करू या मनन खुल्के विरोध गरी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग गरी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नंबर 98-49-85-18-08।

0: विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सकी, जबसम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नै हुईबी भ्रष्टाचार करुया मनै न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
2: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: काती रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाऊँ रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

चुरे जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौ हरियाली बढ़ाऊ चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश